यहाँ हो रहा बस पावर शाम बहन तो पूछ लो कोठी या पीसा मिट्टी पीस रहा हूँ कोठी लानी मौन हो पाना सुन मुझे